चाल बाज मूवी का गाना है। इस गाने में श्रीदेवी और सनी देओल जो हैं वो बारिश पर ये गाना फिल्माया गया है। अब ये दोनों बारिश में भीगे सो भीगे, अब आप ना भीगे, इसलिए फिर से रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि भाई छोटी छतरी जो है वो बैग में रख कर ही आप बाहर जाएं, ताकि बीच में अगर बारिश हो जाती है तो आपको जो है दिक्कत ना हो। और साथ में ये भी होता है कि जब बारिश का मौसम होता है ना तो थोड़ा करंट वगैरह लगने का रिस्क रहता है आसपास, और साथ में फिसलने का भी एक रिस्क रहता है। आई एम सॉरी, मतलब मैं सुबह सुबह ये बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं।

देने चाहिए, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आप ट्यूसडे हैं और आप घर से बाहर निकलेंगे काम के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और भी बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है, तो बारिश में भीगने का मन करे तो ज़रूर भीगें, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और खुशी की बात पता है क्या है कि अब धीरे धीरे ना ढेर सारे त्यौहारों की लाइन लगने वाली है। परसों यानी 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी, यानी कुछ कुछ दिन के बाद जो है वो त्यौहार आएंगे, और सावन भी जो है 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे तो सोचकर ही खुशी से गुदगुदी हो रही है। तो हर उत्सव में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड को अपने मोबाइल और रेडियो सेट पर ऑन करके गानों पर झूमे, नाचे और गाएं और जिंदगी का मजा उठाए। अभी के लिए त्रिदेव मोई का ये धांसू सा गाना आपके लिए राइट है सिर्फ भोर सुहानी शो में, मैं पंकज आपके साथ।

पहले मैंने सोचा था कि आपके लिए गाना और प्ले कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी बात कर लेता हूँ ताकि टाइम कम ना पड़ जाए। और मैं आपको ये बताने वाला था कि भाई भोर सुहानी शो का टाइम जो है वो बस अब थोड़ी देर में पूरा होने वाला है, और अगले घंटे आपके साथ होंगी मुक्ता अर्पण शो में आपके साथ। तो बाकी भाई मैं आपके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस शो में आप मेरे साथ रहे, और बाकी दोबारा जल्दी आपसे मिलूंगा। और हाँ, बारिश का मौसम जो है उसका खूब लुत्फ उठाइएगा, वाकई मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप पार्क वगैरह में घूमने जाएं सो उसका पूरा मजा लीजिए, बहुत सारी सेल्फीज लीजिएगा उसके, तो बहुत ही अच्छी फोटोज आती है। खैर, तो इसी तरह आप सुन रही है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और मुझे यानी पंकज को दीजिए भोर सुहानी शो से अनुमति। दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।

देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकार

कार्य इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वोक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मूज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिरयानी,
1: टंगदी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई.
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
0: जश्न ए हैदराबाद.

That was a 2000s Telugu song about an emerging Hyderabad. Though some things have changed since then, some things are still the same. हैदराबाद में मशहूर क्या है? बिरयानी तो है और ईरानी चाय भी है। एक बड़े भाई ने बोला, अपने हैदराबाद में ऐसा है कि सुबह उठते ही चाय होना और सोने से पहले भी चाय होना। बाहर के लोगों को सोने से पहले चाय नहीं पीते, पर अपने लोगों को चाय नहीं पिया तो नींद नहीं आती। हैदराबादियों का रगों में अगर खाटे तो भी खून की जगह चाय निकलती। वो भी कौन सी चाय? ईरानी चाय होना अपनों अपने को। ईरानी चाय बोलते हुए उतना पसंद है। और तो तब चाय के ऊपर एक तेलुगु गाना सुनेंगे। लेट्स गो।

चटकना तागरा भाई ए चाय चमक ले जोड़रा भाई हाय ए चाय चटकना तागरा भाई ए चाय चमक ले जोड़रा भाई ए चाय खरीद लो चीपुरा भाई ए चाय खुशी

That was another tea song. Chai nahi, I was talking about a different tea here. Plain white teas. An American pop band who made the last song. हमारा लिसनर्स को कैसा लगा नहीं मालूम, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. एनीवेज, हम स्टोरी में वापस जाएंगे. ईरानी वाले आए, ईरानी होटल्स खोले और ईरानी चाय बेचना शुरू करे. बट हमारा वर्जन ऑफ ईरानी चाय और असली ईरानी चाय में बहुत फर्क है. असली ईरानी चाय बोले तो सिर्फ डिकॉक्शन रहता, दो दूध चीनी कुछ भी नहीं रहता. बट ये ईरानी चाय रेगुलर इंडिया चाय से बहुत अलग है. ट्रेडिशनल इंडियन चाय में दूध चीनी चाय पत्ती सब मिला के उबालते हैं ना, पर ईरानी चाय बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है. चाय का चाय पत्ती कड़क डिकॉक्शन जो है वो सेपरेट बनाते और दूध को दिन भर उबालते तो उसको एक रिच क्रीमी फ्लेवर आ जाता. जब कस्टमर ऑर्डर दिया तो ये डिकॉक्शन और वो दूध परफेक्ट प्रोपोर्शन में मिला के दे देते. अब वाह, ये सब बात करने के बाद अब मेरे को भी रानी चाय पीने का मन हो रहा. तब तक आप ये गाना सुन लो.

तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है। सेम फीलिंग नागुड़ा ईरानी चाय गुरुंची गुड़ तो प्रति सारी मनम स्टोरी कंटिन्यू इद्दाम इंका। सो अर्ली 90s ला एंटे लोकल मर्चेंट्स अंदरू कॉर्नरला उन्ना प्रॉपर्टीज तीसुकोकपोतुने वास्तुपरंगा बागुंडदनी। ई सिचुएशन कोत्तगोच्चिन ईरानी माइग्रेंट्स की गोल्डन आपर्चुनिटी अयिंदी। ఈ కార్నర్ ప్రాపర్టీస్ వీళ్ళు

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक

0: वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the 4-day event. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 has evolved into a premier global platform.

Welcome back, listeners. I hope you like all the songs that has been played so far. तो ईरानी चाय अकेले नहीं पी सकते ना, हमको साइड में उस्मानिया बिस्कुट, कारा बिस्कुट, नहीं तो बनमस का होना ही छोना है ना। पर ये उस्मानिया बिस्किट को उस्मानिया बिस्किट बोलते कहीं को, मेरे को क्या मालूम बोलते, बट मैं हूं ना यार, मैं बोल दू। इसका दो वर्जन है। पहला वर्जन ये है कि अपना नवाब साहब मीर उस्मान अली खान बड़ा फूडी कहते, फूड मामले में सब परफेक्ट होना। नवाब साहब ब्रिटिश टी बिस्किट्स बहुत मीठा लगता था और वो चाय के साथ नहीं जम रहा बोल के उनका रॉयल स्टाफ को बोला करते। तो उनके स्टाफ बिस्किट के रेसिपी में नमक ऐड करके एक नया बिस्किट क्रिएट करे, तब पैदा हुआ हमारा उस्मानिया बिस्किट। इसका दूसरा वर्जन भी है, वो दूसरे वर्जन मैं ये गाने के बाद बोलता हूँ।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies.

FM 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 और 26 सेकंड हो रहे हैं और अब पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

गीत सुरेले गाता जा, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे दिलकश और यादगार नगमे, और अखीर में पयाम-ए-शब के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा।

0: तो सामीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं हर्फ ताबिंदा से, जिसे पेश करेंगी मोहतरमा फहमीदा फहमोश। आइए सुनते हैं।
1: ये एक हकीकत है जिसका सामना हमें आज के ज़माने में करना पड़ रहा है। 25 साल पहले की बात करें तो पहले तख्ता सादा होता था और तालिबे इल्म ज़हीन। आज तख्ता स्मार्ट हो गया है और तालिबे इल्म बेतवज्जा। पहले हमारा घर छोटा था, एक ही कमरा होता था जहां रिश्तेदार और हमसाए जमा होते थे। आज हमारा घर बड़ा है, कई कमरे हैं, लेकिन वो खाली है, कोई नहीं होता वहाँ। कोई मुसाफिर है, कोई परदेश में है और कोई दुनिया की मुश्किलात से थका हुआ है। पहले हमारा खाना सादा होता था, चावल और सालन। हम ज़मीन पर बैठकर एक ही प्लेट में खाते और हमारी हंसी हमसायों तक पहुँचती थी। आज दस्तरखान पर हर किस्म की मुर्ग मुसल्लम और रंग बिरंगी प्लेटें होती हैं, लेकिन जगह खाली और दिल भी। पहले सहन में हमारी रातें होती थी, वालिद हमें एक था ज़माना की कहानियाँ सुनाते, हम चाय और मोहब्बत से लुत्फ अंदोज होते। आज हमारी रातें मोबाइल, इंटरनेट और हम खुद खबर बन गए हैं कि एक ज़माने की बात थी। पहले जब कोई बीमार होता तो रिश्तेदार और हमसाए जमा हो जाते, आज भाई भी भाई से मदद मांगने से हिचकिचाता है। पहले 100 रुपये पूरे घर के लिए काफ़ी होते थे, आज 1000 रुपये एक शख्स के लिए भी नाकाफी है। पहले एक ही गाड़ी घर और हमसायों के लिए काफ़ी होती थी, आज हर घर में गाड़ियों की एक कतार है, लेकिन माँ को ड्राइवर लेकर जाता है। पहले मोहल्ले में एक ही मस्जिद होती थी और दूर होती थी, फिर भी सब नमाज पढ़ने जाते थे। आज 3 मसाजिद है, लेकिन मस्जिद में सफ़े खाली होती है। पहले आप जानते थे कि आपका हमसाया क्या खा रहा है, आज वो सफ़र करता है, बीमार होता है, वापस आता है और आपको खबर नहीं। पहले घर में एक ही टेलीविज़न होता था, एक चैनल और वक्त मुख्तसर होता था बच्चों और बड़ों के लिए। आज हर कमरे में टेलीविज़न है और 1000ों चैनल, लेकिन कोई निगरानी नहीं। पहले घर में एक ही फ़ोन होता था और सिर्फ वालिदैन उसका जवाब देते थे, आज हर शख्स के पास 2-2 मोबाइल है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं। ये हकीकत है कि ज़माना तो वही है, महीने, साल और मौसम सब वही है। असल में जो बदला है वो हमारे उसूल और जज्बात है। पहले हमारे घर छोटे होते थे, लेकिन हमारे दिल वसी थे। आज हमारे घर बड़े हैं, लेकिन दिलों में तंगी है। समयन, आज हम बात करेंगे कि हमको किस तरह से नायाब बनना है और उसके लिए क्या उसूल अपनाने होंगे। जैसे कि नायाब बनने के लिए किसी चीज़ का ना मिलना या हमारे पास मौजूद ना होना या हमसे छुपा होना हमें उसकी तरफ दिलचस्पी बढ़ा सकता है। इसके कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले है रोमानवी कशिश। इंसान को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो मुश्किल से मिलती है या जो नायाब है। फिर है तजस्सुस। जब कोई चीज़ हमारे पहुंच से दूर हो या उसके बारे में ज़्यादा मालूमात ना हो तो हमारा तजस्सुस बढ़ जाता है। ममनुआ चीज़ की कशिश। जी हाँ, अक्सर लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो उनके लिए दस्तियाब नहीं होती या जिन पर पाबंदी होती है। जब हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए मुश्किल हो तो उससे हमारा खुद पर एतमाद बढ़ता है और दिलचस्पी भी। बाज़ औक़ात हमारी दिलचस्पी इस बिना पर भी बढ़ती है

0: कि हमें लगता है कि दूसरे इस चीज़ को अहमियत नहीं देते या इसके काबिल नहीं समझते। बाज़ औक़ात नायाबी किसी चीज़ की कदर बढ़ा देती है जिससे उसकी अहमियत और दिलचस्पी बढ़ जाती है। ये तमाम अवामिल मिलकर किसी चीज़ या शख्स के लिए हमारी दिलचस्पी को बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पर जब वो चीज़ या शख्स हमारी पहुँच से दूर हो या नायाब महसूस हो।
1: सामीन, अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा फहमीदा फहमोश से हरफे ताबिंदा। उनके गुफ्तगू का हासिल यही है कि इंसान की असल कद्र उसके माल, ओहदे या जाहिरी आसाइशों से नहीं, बल्कि उसके किरदार, अखलाक, खुलूस और दूसरों के लिए उसकी मोहब्बत से होती है। अगर हम अपने रवैयों में नरमी, अपने रिश्तों में अपनाइत, अपने मामलात में दियानत और अपनी ज़िंदगी में मुसबत अकदार को जगह दें, तो यकीनन हम भी एक नायाब और बाकिरदार इंसान बन सकते हैं। आइए आज ही ये अहद करें कि हम अपने अजीज़ों के लिए वक्त निकालेंगे, रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, दूसरों की कदर करेंगे और अपनी शख्सियत को ऐसी खूबियों से आरास्ता करेंगे जो हमें दुनिया में भी मुमताज़ बनाए और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बने। कैसा होता है और किन मुनफरिद चैलेंजेस का सामना करते हैं, इस दिलचस्प और मालूमाती मौजू पर जनाब मोहतरम नूरुद्दीन साहब से सुनते हैं।
2: सामाइन, आकाशवाणी हैदराबाद पर हफ्तावारी प्रोग्राम बेदारी कायनात सिलसिले के तहत आपकी खिदमत में साइंसी तकरीर पेश की जाती है। इसी सिलसिले के तहत आइए सामाइन एक और तकरीर सुनते हैं। बउनवान, बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन पर खलाबाज कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन खला में इंसान का पहला घर है, जहां इंसान ज़मीन से बाहर रहने और ख़ुद को नए माहौल में ढालना सीख रहा है। जो खला में तैरती हुई बस्तियां बसाने और दूर दराज के सैयारों में आबाद होने में उसे मदद देगा। ज़मीन से तकरीबन 250 मील की दूरी पर गर्दिश करने वाले खलाई स्टेशन में ज़िंदगी की शुरुआत 2 नवंबर 2000 में हुई थी। अब तक वहां दुनिया के 20 मुल्कों के 260 से ज़्यादा अफराद जा चुके हैं, जिनमें से कुछ वहां एक बरस से ज़्यादा क़याम भी कर चुके हैं। अब खला के दरवाज़े आम लोगों के लिए खुल रहे हैं और स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट फ्लाइट से लोगों की खला में आमदोरफ्त शुरू हो गई है। मुमकिन है कि कभी आपको भी खला और बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन पर जाने का मौका मिले। आइए हम आपको बताते हैं कि खला में तैरते हुए पहले इंसानी घर में आपके रोज़ो शब कैसे होंगे। खलाई स्टेशन पर आपको सबसे पहला तजुर्बा ये होगा कि उसके दिन और रात बहुत छोटे हैं और हर 45 मिनट के बाद आप वहां सूरज को निकलते और गुरुब होते हुए देखेंगे, क्योंकि खलाई स्टेशन ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और 90 मिनट में वो अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। ताहम खलाई स्टेशन में रोज़मर्रा के मामूलात ज़मीन के 24 घंटे वाले क्लॉक के मुताबिक चलते हैं। खलाई स्टेशन के तीन बुनियादी हिस्से हैं। पहला डॉकिंग एरिया है, जिससे खलाई जहाज़ आकर जुड़ते हैं और इस रास्ते सामान लाया भेजा जाता है और खलाबाजों की आमदोरफ्त होती है। दूसरा हिस्सा रिहायशी है, जिसमें लगभग 5 लोगों की गुंजाइश है, जिसमें टॉयलेट और खाने की मेज़ और ऊन भी मौजूद है। तीसरा हिस्सा तजुर्बे गाहों पर मुश्तमिल है। खलाई स्टेशन की एक बड़ी खूबी ये है कि आप वहाँ बीमार नहीं होंगे, क्योंकि खला में जरासीम या वायरस मौजूद नहीं हैं। वहां जरा

कासिम सिर्फ खलाबाजों के साथ ही जा सकते हैं, जिसकी बहुत एहतियात की जाती है। जरासीम ना होने का ये मतलब नहीं कि आप बीमार नहीं होंगे। वहाँ आपकी सेहत को मुतासर करने वाली कई चीज़ें मौजूद हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ कशिश नखल नहीं है, चुनांचे आप पाँव पर खड़े होने की बजाय गुब्बारे की तरह तैरना शुरू कर देते हैं, और आपको खड़ा होने के लिए किसी चीज़ को पकड़ने और सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। खलाई स्टेशन में जाते ही सर भारी होना और चेहरे पर सूजन आना शुरू हो जाती है। मुमकिन है कि जी मतलाने और चक्कर भी आने लगे। इसकी वजह यह है कि कशिश नखल का ना होने से पाँव की जानिब खून की गर्दिश सुस्त पड़ जाती है और इसका रुख चेहरे की तरफ हो जाता है। इस पर काबू पाने का तरीका वर्जिश है। खलाई स्टेशन में खलाबाज रोज़ाना 2 घंटे तक वर्जिश करते हैं। वहाँ ट्रेडमिल और एक्सरसाइज साइकिल मौजूद है। वर्जिश इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप अपनी टांगों को हरकत नहीं देंगे तो इसके आसाब कमज़ोर हो जाएंगे और चलना फिरना मुश्किल होता जाएगा। खलाई स्टेशन में मुश्किल आपको सोने में भी होगी, क्योंकि वहाँ हर 45 मिनट के बाद दिन और 45 मिनट के बाद रात होती जाती है। दूसरा, खलाई स्टेशन में नसब आलात और मशीनों का शोर बहुत है। और तीसरा ये कि बेवजनी की वजह से आप बिस्तर पर टिक नहीं सकते और लुढ़क जाएंगे। लेकिन आप आँखों पर मोटा गिलाफ चढ़ाकर, कानों को बंद करके और ख़ुद को बिस्तर के साथ बांध कर नींद ले सकते हैं। शुरू में तो मुश्किल होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता आप इसके आदी हो जाएंगे। हाँ, मगर खाने के मामले में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ आपको खाने के लिए ज़मीन पर मिलता है, तकरीबन वो सभी चीज़ें खलाई स्टेशन पर भी दस्तियाब हैं। आपका दिल किसी ख़ास चीज़ को खाने को चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। ज़मीनी मरकज़ से तकरीबन हर 2 महीने के बाद खलाई स्टेशन के लिए सप्लाई की जाती है, और कभी कभार तो इसमें आइसक्रीम भी शामिल होती है, जिसे खलाबाज बड़े शौक से खाते हैं। खलाई स्टेशन में आइसक्रीम स्टॉक नहीं की जा सकती, क्योंकि फ्रीज़र बहुत छोटा है और इसे ज़्यादातर साइंसी तजुर्बात के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। खलाई स्टेशन में आपके लिए खाने की काफ़ी वैरायटी है। खाने की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन तकरीबन सभी कुछ मिल जाता है। नाश्ते में आपके लिए दलिया, दूध दही, मुख्तलिफ किस्म की ऑमलेट, सूप, फल और कॉफ़ी दस्तियाब है। कॉफ़ी की बात हम ज़रा बाद में करेंगे। दोपहर और रात के खाने के लिए भी बहुत कुछ मौजूद है। चिकन, मछली, झींगे, चावल, सब्जियां और फल और कई तरह की मशरूबात मिल सकते हैं। ताहम इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ज़मीन से सप्लाई कब आई थी। मशरूबात ज़्यादातर टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में होते हैं, जिन्हें दबाकर मुंह में डाला जाता है, क्योंकि बेवजनी की वजह से पानी और मशरूबात गोले से बनकर तैरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ हुई है, जिससे पानी वगैरह को पीना मुमकिन हो गया है। खलाई स्टेशन पर आपको मशहूर ब्रांड के केचप और चटनियाँ भी मिल जाती हैं, और बेवजनी की कैफियत और मुंह के ख़राब जायके के बाइस उन्हें खाना अच्छा लगता है। खाने के पैकेट या डब्बे को आम तौर पर ऊन में गर्म करके खाया जाता है। ये ऊन गर्म हवा के उसूल पर काम करता है। आप चाहें तो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। इसके लिए खुराक के पिसे हुए पैकेट मौजूद हैं। आप इसमें पानी डालकर गर्म कर लें। इससे पहले हमने कॉफ़ी की बात की थी, आइए आपको बताते हैं कि खलाई स्टेशन में कॉफ़ी बनाने या पीने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल होता है। पानी खलाई स्टेशन के लिए सबसे अहम मसला है, क्योंकि पानी ज़मीन से आता है और वो बहुत महंगा पड़ता है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ज़मीन से खलाई स्टेशन में 1 गैलन पानी पहुंचाने के अखराजात $83,000 से ज़्यादा हैं। खलाई स्टेशन भेजी जाने वाली सप्लाई में चूंकि और भी बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए पानी की एक महदूद मकदार ही भेजी जा सकती है। खलाई स्टेशन को भेजी जाने वाली सप्लाई की बात चल रही है, तो ज़रा इसके अखराजात की भी बात हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने साल में 5 सप्लाई खलाई स्टेशन तक
पहुंचा।

0: बनाने के लिए 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का मुआहदा किया है, जबकि वज़न के हिसाब से सामान की कीमत इसके अलावा है। पानी की बचत के लिए खलाई स्टेशन में फिल्ट्रेशन और रिसाइकलिंग का खसूसी निज़ाम नस्ब किया गया है। ये निज़ाम इस्तेमाल शुदा पानी समेत पेशाब को भी साफ़ करके दोबारा पीने के काबिल बना देता है। चुनांचे कॉफ़ी बनाने और पीने में यही पानी इस्तेमाल किया जाता है। कॉफ़ी पीते हुए खलाबाज अमूमन मजाक में ये कहते हैं कि ये वही काफ़ी है जो हमने परसों पी कर खारिज कर दी थी। खलाई स्टेशन में कई मुल्कों के खलाबाज जाते हैं, जिनमें रूसी भी शामिल हैं। वो पेशाब को साफ करके बनाया जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना अलग फिल्ट्रेशन प्लांट नसब किया है। खलाई स्टेशन का फिल्ट्रेशन प्लांट इतना ताकतवर है कि खलाबाजों के पसीने और सांस में मौजूद नमी में से भी पानी चूसकर उसे दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बना देता है। साइंसदानों का कहना है कि खलाई स्टेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला तकरीबन 98% पानी दोबारा हासिल कर लिया जाता है। खलाई स्टेशन में पानी एक और लेकिन सबसे अहम मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो है ऑक्सीजन तैयार करना। ये तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, और इसके बगैर चंद मिनट भी ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। खलाई स्टेशन का एक प्लांट पानी के एटम को तोड़कर उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में तब्दील कर देता है, जिसके बाद हाइड्रोजन को खला में खारिज कर दिया जाता है। ऑक्सीजन का जिक्र आया है तो ये बात भी आपके लिए दिलचस्प होगी कि खलाई जहाज में हवा का दबाव इतना ही रखा जाता है जितना कि ज़मीन पर है, और हवा में ऑक्सीजन का तनासुब भी ज़मीन जैसा ही रखा जाता है। चुनांचे आपको खलाई जहाज के अंदर सांस लेने के लिए मास्क लगाने और खलाई लिबास पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खलाई स्टेशन में आप चाहें तो नहा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ का गुस्ल ज़मीनी गुस्ल से बहुत मुख्तलिफ है। नहाने के लिए आप दो तौलिये इस्तेमाल करते हैं, एक गीला और दूसरा खुश्क। गीले तौलिये से आप जिस्म को साफ करते हैं और खुश्क तौलिये से उसे पोंछ लेते हैं। सर धोने के लिए एक ख़ास शैम्पू है जो पानी के बगैर ही बालों को साफ कर देता है। टूथपेस्ट च्युइंगम जैसा है जिसे आप चबाकर निगल लेते हैं और दांत साफ हो जाते हैं। टॉयलेट में पेशाब और फुजला अलग-अलग हिस्सों में जाता है। पेशाब को रिसाइकल कर लिया जाता है, जबकि फुजले को एक कंटेनर में बंद करके ज़मीन पर जाने वाले सामान के साथ भेज दिया जाता है। जब रॉकेट ज़मीन के फ़जाई कुर्रे में दाखिल होता है तो इस कंटेनर को खोल दिया जाता है। फुजला फ़ज़ा में बिखर कर हवा की रगड़ से जलकर राख हो जाता है। खलाई स्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा खुद कफ़ील बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज़मीन की सप्लाईज़ पर उसका इन्हिसार कम से कम किया जा सके। साइंसदान खला में सब्जियां उगाने और कुदरती अमल के ज़रिए ऑक्सीजन बनाने के भी तजुर्बात कर रहे हैं। खलाई स्टेशन अपनी ज़रूरत की बिजली खुद पैदा कर रहा है, और इसके शमसी पैनल यानी सोलर पैनल 90 किलोवाट तक बिजली फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। और हाँ, हम ये तो आपको बताना भूल ही गए हैं कि खलाई स्टेशन में ज़मीन से राबते को एक मरबूत निज़ाम दिया गया है, और आप वहाँ से नंबर घुमाकर दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते हैं।
1: सामीन, ये थी बेदारे कायनात सिलसिले की साइंसी तकरीर, जिसमें जनाब नूरुद्दीन साहब ने हमें बैन अलाक्वामी खलाई स्टेशन पर खलाबाजों की ज़िंदगी और वहाँ दरपेश चैलेंजेस और जदीद साइंसी सहूलतों के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम की। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद और दिलचस्पी का बाइस रही होंगी। सामीन, और अब वक्त हुआ चला है हमारे दिलकश, यादगार और महफिल को मज़ीद खुशगवार बनाने वाले प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जागा। इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम आपकी समातों की नज़र करेंगे माजी के वो सुरेले दिलनशी और लाजवाल गीत, जो आज भी अपनी मिठास, खूबसूरत बोल और दिलकश धुनों की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा है। सामीन, दिल भी बड़ा अजीब होता है, कभी हंसता है, कभी किसी के लिए बेचैन हो जाता है। जब मोहब्बत हो जाए तो दिल वाकई पागल सा लगने लगता है, और फिर हर बात, हर लम्हे

हर एहसास खूबसूरत लगने लगता है। ऐसे ही खूबसूरत जज्बात को कुछ गीत बहुत प्यारे अंदाज में बयान करते हैं, आइए सुनते हैं।

सामीन, आपने सुना फिल्म दिल तो पागल है का खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत दिल तो पागल है दिल दीवाना है। यकीनन इस नगमे के खूबसूरत बोल, नर्म मौसीकी और लता मंगेशकर और उदित नारायण की दिलकश आवाज़ ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। ऐसे गीत मोहब्बत के एहसास को और भी खूबसूरत बना देते हैं, इसीलिए बरसों बाद भी लोग इन्हें शौक से सुनते हैं। सामीन, मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। दिल जब किसी की याद में धड़कने लगे, हर लम्हा अच्छा लगने लगे और ज़िंदगी में एक नई खुशबू सी महसूस हो, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत ने दिल में जगह बना ली। अब हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं फिल्म जोली का एक नहायत खूबसूरत और मकबूल नगमा, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। इस गीत को अपनी दिलकश और जादू भरी आवाज़ से सजाया है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं।

सामीन, आपने सुना फिल्म जूली का खूबसूरत गीत, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। किशोर कुमार की नर्म और दिल में उतर जाने वाली आवाज़ ने इस नगमे को और भी यादगार बना दिया है। ये गीत मोहब्बत के उन खूबसूरत जज्बात को बयान करता है जिन्हें अल्फाज में बयान करना हमेशा आसान नहीं होता। उम्मीद है कि ये नगमा आपको पसंद आया होगा और इसकी मिठास ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। सामीन, ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, ख़ासतौर पर जवानी की वो खूबसूरत उम्र जब दिल में नए जज्बात जन्म लेते हैं और हर बात अच्छी लगने लगती है। पहली मोहब्बत का एहसास भी

की मिठास ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। सामीन, जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, खासतौर पर जवानी की वो खूबसूरत उम्र जब दिल में नए जज्बात जन्म लेते हैं और हर बात अच्छी लगने लगती है। पहली मोहब्बत का एहसास भी कुछ ऐसा ही होता है जो इंसान के दिल में एक मीठी याद बनकर रह जाता है। अब हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए का एक नहायत खूबसूरत और मकबूल नगमा। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज में पेश किया है लता मंगेशकर ने। ये नगमा अपनी खूबसूरत शायरी और दिल को छू लेने वाली मौसीकी की वजह से आज भी बेहद पसंद किया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा और यादगार गीत।

सामीन, आपने सुना फिल्म में एक दूजे के लिए का खूबसूरत नगमा। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। लता मंगेशकर की मीठी और दिलकश आवाज़ ने इस गीत को एक ख़ास खूबसूरती अता की। ये नगमा जवानी, मोहब्बत और खूबसूरत एहसासात की याद ताज़ा कर देता है, इसीलिए आज भी लोग इसे शौक से सुनते हैं। उम्मीद है कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। सामीन, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनके बोल दिल को फौरन अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे नगमे सिर्फ मौसीकी नहीं होते बल्कि जज्बात की खूबसूरत तर्जमानी होते हैं। अब हम आपके खिदमत में पेश करने जा रहे हैं फिल्म गुलामी का एक नहायत दिलकश और यादगार गीत। आइए सुनते हैं।

सामीन, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान अपने दर्द और जज्बात को लफ्जों में बयान नहीं कर पाता। दिल में छुपी शिकायतें, खामोश एहसासात और अपनों की बेरुखी इंसान को अंदर ही अंदर उदास कर देती है। और फिर कुछ गीत ऐसे बनते हैं जो दिल की उन्हीं कैफियतों को बहुत खूबसूरती से बयान कर देते हैं। अब हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं फिल्म जुल्म का एक खूबसूरत और दर्द भरा नगमा, जुल्मे तूने जुल्म किया। इस गीत को अपनी खूबसूरत और दिलकश आवाज़ में पेश किया है आशा भोसले ने। अपनी सादा शायरी और दिल को छू लेने वाले अंदाज की वजह से ये गीत आज भी मौसीकी पसंद करने वालों के दिलों में अपनी जगह रखता है। तो आइए सुनते हैं।

समीन, मोहब्बत का आगाज कब और कैसे हो जाता है ये अक्सर इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता। दिल आहिस्ते आहिस्ते किसी के करीब हो जाता है और फिर हर लम्हा खूबसूरत लगने लगता है। कभी यही एहसास खामोशी से दिल में जगह बनाता है और कभी एक खूबसूरत गीत की सूरत में दिल की बात कह जाता है। अब हम आपके लिए एक ऐसा ही प्यारा और दिलकश नगमा लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं।

0: बरसों बाद यूं घूमने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करें।
2: सामीन, आप गीत सुरीले गाता जा के तहत मुख्तलिफ खूबसूरत गीत और नगमे सुन रहे थे और उनसे लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे थे। अब वक्त हुआ चला है हम इस खूबसूरत महफिल को इख्तिताम की तरफ ले जाएं, तो आइए इससे पहले सुनते हैं आज की शब का एक खूबसूरत पैगाम, तहरीर व पेशकश है जनाब ज़ैदी साहब की।

0: रुदाद गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न मिला होंठों से और आंख में आंसू आ भी गए। बास जज्बात इतने गहरे होते हैं कि उन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं रहता। दिल का दर्द जबान से ज्यादा आंखों से होता है। इंसान को यह समझना चाहिए कि हर एहसास को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। सच्ची मोहब्बत खुलूस और गम अक्सर खामोशी में अपना असर दिखाते हैं। दिलों के रिश्ते सिर्फ गुफ्तगू से नहीं बल्कि एहसास हमदर्दी और बाहमी समझ बूझ से मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करें क्योंकि कभी कभी किसी की खामोशी उसकी सबसे बड़ी फरियाद होती है और उसकी आंखों के आंसू पूरी दास्तान सुना देते हैं। हर दर्द जबान से बयान नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोश आंखें वो हकीकत कह देती हैं जिसे अल्फाज अदा नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों के एहसासात को समझने और उनके दुख में शरीक होने की आदत अपनाएं।
1: सामीन, अभी आपने पयाम शब जनाब जैदी साहब की आवाज में समाप्त फरमाया। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान मशकूर अहमद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और तवज्जो का बेहद शुक्रिया।

0: भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यूएनसीए

0: मेलों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और यूएनसीएलओ के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey.

0: Welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं, बाजार विशेष की खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची नमस्कार, गुड इवनिंग अर्जुन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,052. Government releases the first index of services production for 19 subsectors and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 561 अंक लुढ़का. निफ्टी 24,052 पर बंद हुआ. केंद्र सरकार ने 19 सबसेक्टर के लिए सर्विस प्रोडक्शन का पहला सूचकांक जारी किया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने, यानी कि घरेलू शेयर बाजार ने, कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 24,052 पर आ गया. निफ्टी के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट आई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 Index fell nearly 1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. सबसे खराब प्रदर्शन करने

0: वाली कंपनियों के शेयरों में एचसीएल टेक लगभग 4.5%, इंडिगो 2.3% और बजाज फिनसर्व में 2.2% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो भारती एयरटेल 1.5% से अधिक, टीसीएस 0.8% और सनफार्मा में लगभग 0.5% की बढ़त हुई।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, mid-small private banks Quality Tilt dropped 1.92%, Realty fell by 1.91% and PSU banks lost 1.79%. In contrast, utilities jumped 0.7%, metals rose by 0.63% and healthcare added 0.53%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 1,501 companies advanced, 2,737 companies declined and 195 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.10 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज का जलडमरू मध्य एक मछली के कांटे की तरह गले में फंसा हुआ है, शायद इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बाजार की प्रतिक्रिया इस तरह से है।
2: नहीं प्राची, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से मैं कहूँगा वेस्ट एशिया क्राइसिस जो शुरू हुई उसके बाद से जो बाज़ार में एक हम कह सकते हैं कि जो एक उथल पुथल या वॉलेटिलिटी बनी हुई है तो वो अभी भी कायम है। और मुझे लगता है जो फिर से जो एक एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट हो गया, 60 दिन का युद्ध विराम हुआ और ये हुआ कि उसके उस दौरान बातचीत करके एक डिटेल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, लेकिन शायद वो सब होता उससे पहले ही फिर से एक बार जो है स्थिति खराब हो गई है और अमेरिका ने दोबारा जो है ईरान पे आक्रमण कर दिया है और ईरान भी डटा हुआ है और ईरान ने भी मतलब आज की डेट में अगर हम ये कहें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा है कि अब उनकी तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल बंद है। ईरान ने तो अपनी तरफ से जो है रोक लगाई दी है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि संडे के बाद से जो आवाजाही है जो जो तेल के जो जहाज़ हैं या गैस या तेल के जो भी जहाज़ हैं तकरीबन हमने देखा है एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां ईरान ने अटैक भी किया, उसमें कुछ भारतीय भी हताहत हुए हैं और भारत ने इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। तो मुझे लगता है और वही कारण है कि जो बाजार पे भी ये उसका इस अनिश्चितता इस इंस्टेबिलिटी का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है।
0: जी सिद्धार्थ, पिछले कुछ हफ्तों में बाजार में हमने बढ़त देखने को मिली, अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा अनिश्चित एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है तो उस हवाले से क्या आज और इन बीते कुछ सत्रों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या आज भी हमें उसका प्रभाव मुनाफा वसूली का प्रभाव देखने को मिला है?
2: नहीं, देखिए जब ऐसा पीरियड होता है तो ऑब्वियसली लोग जिसको कहते हैं ना कि अपना पैक हंटिंग, मतलब अगर जो निवेशक है उसको ऐसे मौके आते हैं जब उसको लगता है कि मैं इस लेवल पे कुछ अपना जो है प्रॉफिट जो है बुक कर लूं और आगे शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा मैं बाज़ार में आऊँगा तो शायद, और बाज़ार में आप आते भी इसीलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जो निवेशक का एक एम होता है कि कहीं ना कहीं, तो वो एक कारण है। और मुझे लगता है ऐसी अनिश्चितता का जो माहौल है तो बाजार कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड हो गया। और जब से वेस्ट एशिया, चूंकि अब तकरीबन जुलाई का मिड जुलाई में है तो कहीं ना कहीं ये बात भी तय है, आप चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से जो उनके एस्टिमेट्स हो इस साल की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसमें भी उन्होंने भी उसको घटाया है और इन्फ्लेशन को लेकर सारी दुनिया में चिंता है तो कहीं ना कहीं वो बाजार में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। शायद इसलिए निवेशक इस स्टेज पे उनको लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आगे दिखे, क्योंकि आप अमेरिका में भी देखेंगे तो ये एक डर बना हुआ है कि शायद वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ की फेड रिजर्व जब अभी इस महीने के अंत में वो बैठेगा तो शायद हो सकता है, तो इस सब का कहीं ना कहीं एक मार्केट पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और शायद इस वजह से निवेशक शायद थोड़ा इस समय अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं।
1: Siddharth, clearly the inflationary impact was seen in the CPI figures for the month of May. Now you have the figures for the month of June. The wholesale price index figures have also been released and manufactured products are also seeing a hit in terms of a price increase. And that's clearly affecting consumers.

0: supplies through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 4.07% up at $86.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.5% up at $80.10 per barrel when reports last came in. Last time there was a rollback of hostilities was when oil prices crossed $100. What is going to be the U.S. reaction to this rise in international crude prices?
1: See, I don't think this increase in prices is happening only because of U.S. reaction. The announcement by Donald Trump shutting down the Strait of Hormuz, and he's talking about a 20% tax. And on the other side, Iran saying we will not allow any movement or would not allow this kind of, you know, tax to be imposed. And if at all anything, it has to be a tax, it has to be a very minimal amount. So I think till there is an agreement between the two sides, I think we should see this these kind of levels, and which is not a good news for India.
0: And what is our imports like right now? Do we have the strategic petroleum reserves to counter this? We're already taking steps in the form of blending of petrol so that, you know, prices are affordable and it is accessible to the market.
1: Arjun, we have already taken steps, but yes, and especially the government had taken, as you talked about, ethanol. Plus, we've also diversified our sources from where we import our energy needs. But even then, the price going up is not a good news for us, and anything below 80 is good for us. But still, government of the day has tried to shield the consumer from these high level, and we haven't seen much increase in retail prices except one or two times when the prices were increased.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 2.05% higher at 1,43,460 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.37% up at 2,25,080 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.7% बढ़कर 1,42,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 3.2% बढ़कर 2,24,757 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. क्योंकि समय की नजाकत है, मगर एक संक्षिप्त में आपसे टिप्पणी चाहूंगी.
1: नहीं, देखिए, गोल्ड एक मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो कन्वेंशनल रूल्स थे वो इस आज के टाइम में उनको उनमें जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चैलेंज हो रहा है. जब भी कोई क्राइसिस आती थी पहले देखा जाता था गोल्ड के दाम ऊपर जाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे गोल्ड के दाम नीचे आ रहे हैं, जबकि दुनिया में पूरी तरफ अनिश्चितता है. शायद उसका एक कारण है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, साथ साथ शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है गोल्ड में. तो मुझे लगता है मतलब ऐसे टाइम पे अभी फिलहाल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस इसी लेवल्स पे रहेंगे अगर ये हॉस्टिलिटी बनी रहती है. बिकॉज अमेरिका में एक ये भी फियर है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर ही रहने वाले हैं, तो लोग जो है गोल्ड से सिक्योरिटीज में मूव कर रहे हैं.
2: जी, धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए.
1: धन्यवाद.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 550 points. Nifty settles at 24,052. Government releases the first index of services production for 19 subsectors. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: चलो चलो घंटी बज के चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन चाचा।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए उधार रख के जा तो रहा है लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। फूलमती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और जो गीत अभी आपने सुना वो था फिल्म दुश्मन से लता मंगेशकर की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में बस आज बस इतना ही। सुर भी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर, तो छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ और अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन

0: 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ 10वां पेयजल संवाद आयोजित किया। बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नेपाल और भारत ने कल ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। काठमांडू में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और अतिरिक्त विदेश सचिव मुन्नू महावर के साथ बैठक की। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अब से थोड़ी देर बाद टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the deputy chief of mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth level officers will now visit house to house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till yesterday, the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, BharatTex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा। गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। जिंदगी सरखुशी जुनू वहशत, सब उन्हीं रास्तों पर चलते रहे। उम्र भर हम दिल को मसलते रहे, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर हम दिल को मसलते रहे।

ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं है जहां के लिए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं, मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है एक बार मुस्कुरा दो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब किसी का सपना आपकी आंखों में बस जाए तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपना बनाने का नाम है। क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहां दो दिल एक ही ख्वाब साथ देखते हैं।

ऋषिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि भरोसा है जो हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है, और जब किसी का साथ दिल से मिल जाए तो हर सफर आसान और हर खुशी दुगनी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जो हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनकर साथ निभाता है। तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, इसमें चेहरे का अपनापन अच्छा लगता है। तुंद हवाओं तूफानों से जी घबराता है, हल्की बारिश का भीगापन अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। यकीनन सच्चा प्यार यादों में नहीं, निभाए गए वादों और हर पल साथ खड़े रहने में बसता है। और जब रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ हो तो दूरियां भी उस प्यार को कभी कम नहीं कर सकती।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ पल शब्दों से नहीं सिर्फ एहसास से जिए जाते हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो दुनिया की हर आवाज फीकी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जहां सुकून भी हो, अपनापन भी हो, और हर धड़कन में बस एक दूसरे का एहसास हो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं कि उनकी मौजूदगी ही सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है। सच्चा प्यार किसी एहसास का नाम नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले उस रिश्ते का नाम है जहां हर पल सिर्फ और सिर्फ अपनापन और सम्मान महसूस होता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे। वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, उसके दिल में तू मेरे वास्ते उल्फत लिख दे। वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, उन किताबों में बस एक लफ्ज़ से मोहब्बत लिख दे। मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय के आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर जानकारी

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। जब ये दिल किसी को सच्चे मन से चाहने लगता है तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। और मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वो बिना कहे भी सब कुछ बयां कर जाती है।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं, उनकी मौजूदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है और सच्चा प्यार एहसान का नाम नहीं होता बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले रिश्ते का नाम है, जहां अपनापन, सम्मान, सच्ची मोहब्बत सब कुछ साथ होता है। उसके साथ रहने से हर रात चांदनी और हर पल खास लगने लगता है। प्यार वही है जो साधारण लम्हों को भी यादगार बना दे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11

बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब दिल को उसकी अपनी धड़कन मिल जाती है तो जिंदगी की हर राह खूबसूरत लगने लगती है। सच्चा प्यार किसी वजह का मोहताज नहीं होता, बस वो दिल से दिल तक पहुंच ही जाता है। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो हर दिन एक नई मुस्कान और हर पल एक नई खुशी लेकर आता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, कुछ रिश्ते किस्मत नहीं दिल चुनता है। जब किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन जाए और उसकी मौजूदगी आपका सुकून, तभी मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है। सच्चा प्यार वही है जहां दो दिल बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपना लेते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गम गुसारों की बात करते हो, किन सहारों की बात करते हो, हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, क्यों बहारों की बात करते हो। हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, किन सहारों की बात करते हो।

कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, वे दिलों को करीब लाने का एक खूबसूरत जरिया बन जाती हैं, बहाना बन जाती हैं। जब नजरें मिलती हैं तो कई अनकहे एहसास अपने आप दिल तक पहुंच जाते हैं। शायद प्यार की शुरुआत भी एक ऐसी ही प्यारी मुलाकात से होती है।

छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे, बंद आंखों में मेरी झांकते रहना उनका, शब बनाती है यूं ही लम्हे सुहाने मेरे, जब भी तन्हाई में मैं उनको भुलाने बैठूं, याद आते हैं मुझे गुजरे जमाने मेरे। दोस्तों, मोहब्बत की खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं बल्कि खास लम्हों में होती है जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी उम्र भर की सबसे प्यारी याद बन जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त से नहीं एहसास से मापा जाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सास में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच

में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ सुरभि। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, जिंदा है सर पे मौत की परछाइयों के साथ। हमसे बिछड़ के भटकेगा हमदम तू देखना, दिल में बसाया है तुझे गहराइयों के साथ। जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो हर एहसास अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। सच्ची मोहब्बत को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंखें और मुस्कान ही दिल की हर बात कह जाती हैं। प्यार वही है जो हर धड़कन में सुकून बनकर बस जाए।

इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर किसी को ये नसीहत नहीं की जा सकती। कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, यार लोगों से मशक्कत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर ये नसीहत हर किसी को नहीं की जा सकती।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नहीं होता, बल्कि आंसुओं को मुस्कान में बदल देने का नाम है। जब कोई दिल से आपका अपना बन जाता है तो उसकी एक मुस्कान ही हर दर्द को हल्का कर देती है। यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सच्चा प्यार पाने में नहीं बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने में होता है। जो प्यार दिल से किया जाए वो हमेशा इज्जत, दुआ और खूबसूरत याद बनकर दिल में रहता है।

भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

और दिल की सादगी में होती है। जब किसी की भोली सी मुस्कान दिल को छू जाए तो हर पल अपने आप में खास हो जाता है। प्यार वही है जो सादगी में भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ढूंढ ले।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सच्ची खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि मासूमियत, मुस्कान

0: जाने मन जा।
1: संबोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरजाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल दागा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई
2: Vessels MT Albahaya and MT Mombasa during their transit to the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said that the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, social security, formalization of labour markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. The meeting will also consider and adopt a draft declaration prepared by the Employment Working Group. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested proclaimed offender Shibu Kumar Singh, one of the accused, in the Sukanta Ghosh murder case. He was arrested yesterday from his hideout at Raiganj Road in Gorakhpur, where he was allegedly living under the assumed name of Akhilesh Kumar Shahi. According to the CBI, the accused had been absconding for several years and was declared a proclaimed offender in 2016. The CBI said he was apprehended on the basis of human intelligence and technical inputs. After obtaining a transit warrant, the accused will be taken to Kolkata today and produced before the competent court. Spain stormed into the FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the semi-final at the Dallas Stadium in Texas, US. Now France will face the winner of the second semi-final between Argentina and England, scheduled to be held at Atlanta Stadium on Wednesday at 12:30 p.m. Indian time. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of 3-match ODI series at Edgbaston in Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. Akshar Patel was adjudged player of the match. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, रात की इस खूबसूरत शांत और सुकून भरी बेला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम को इस बेहतरीन से नगमे के साथ।
1: ये रातें, ये मौसम।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें जितनी बार सुनिए, हर बार ये दिल को नई ताजगी दे जाते हैं। और अब पेश है एक और अनमोल धुन, जिसमें प्यार की मासूमियत और संगीत की मिठास दोनों साथ चलते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। दोस्तों, रात धीरे धीरे और भी हसीन होती जा रही है और इसी खूबसूरती को संगीत के रंगों से सजाने का सिलसिला हम और आप मिलकर कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसके बोल और धुन आज भी हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आते हैं।

0: का बहाना।
1: कितना सुकून मिलता है ना जब ये पुराने गीत कानों में घुलते हैं और यादों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे ही शानदार गीत की तरफ।

दोस्तों, रात अब अपनी पूरी रौनक पर है और हम भी इस सफर में आपके साथ हैं। दोस्तों, पुराने गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जिंदगी के कई खूबसूरत एहसासों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। और अब पेश है एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की सादगी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।

दोस्तों, संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस वक्त बदलता है। लेकिन अच्छी धुनें हमेशा नई सी लगती हैं। और इसी एहसास के साथ चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, पुराने गीतों की ये खास बात होती है कि ये कभी शोर नहीं मचाते, बल्कि धीरे धीरे हमारे दिल में उतर जाते हैं, उन यादों की तरह जो हमारे दिल के किसी कोने में छुपी हुई हैं। दोस्तों, चलिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, यादें अक्सर किसी धुन का सहारा लेकर ही लौटती हैं, और यही वजह है कि पुराने गीत हमेशा हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, हमारे लिए बहुत खास होते हैं। तो आप सुनिए कार्यक्रम की अगली शानदार प्रस्तुति।

दोस्तों, रात का ये सफर अब आगे बढ़ रहा है और संगीत की मिठास भी। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को इस कार्यक्रम हमराही से विदा दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले कार्यक्रम अरुणिमा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार

0: के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
0: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने बरसों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

वाह क्या मधुर गीत था दोस्तों। पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन इन गीतों की मधुरता कभी नहीं बदलती। हर शब्द, हर धुन, हर एहसास सीधे दिल तक पहुंचता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत अपनापन, जीवन की सरल भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। आइए बढ़ते हैं उस गीत की तरफ।

दोस्तों, पुराने दौर के संगीतकारों ने जिन धुनों को रचा, गीतकारों ने जिन शब्दों को गढ़ा, वे आज भी उतने ही ताज़ा महसूस होते हैं जितने उस वक्त थे। यही वजह है कि पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन इन गीतों का जादू कभी भी कम नहीं होता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही बीते दिनों की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं।

दोस्तों सचमुच संगीत भावनाओं की ऐसी भाषा है जिसे हर दिल समझता है। पुराने दौर के संगीतकारों ने धुनों में जो जादू भरा, वही जादू आज भी हर पीढ़ी को अपनी तरफ खींच लेता है। लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, संगीत की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। हर धुन एक नई कहानी सुनाती है और हर गीत किसी ना किसी एहसास से जुड़ जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों, रात की इस पहर में जब कोई मधुर धुन कानों में उतरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। और इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम के अगले गीत के साथ।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, लेकिन दिन का या रात का कोई भी पल हो, अगर कुछ वक्त के लिए अच्छे संगीत के साथ बिता लिया जाए तो मन फिर से तरोताजा हो उठता है। आइए इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, कहीं प्रेम की, कहीं बिछड़ने की, कहीं उम्मीद की, तो कहीं जीवन को मुस्कुराकर जीने की। और कहते हैं कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता, यही कारण है कि वर्षों पहले बनी धुनें आज भी उतनी ही ताज़ा लगती हैं और हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाती हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, पुराने दौर का संगीत सादगी, मधुरता और भावनाओं का सुंदर संगम था। हर धुन में अपनापन था, हर बोल में जीवन की कोई ना कोई सच्चाई थी। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो अपने शब्दों और संगीत से दिल को छू लेता है।

दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए अलविदा। मुलाकात होती है आपसे अगले घंटे, अगले कार्यक्रम भोर सुहानी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरु मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से

0: चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बेस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and United Kingdom comes into force today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said, the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम भोर सुहानी, जहां बातें होती हैं दिल की, मुस्कुराहट की और जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। आज हम साथ रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस कुछ प्यारी बातें, कुछ खूबसूरत गीत और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज दौड़ती है कि हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, लेकिन आज का ये सफर

उसी भूली हुई बातचीत के नाम है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए और शुरू करते हैं एक खूबसूरत सोच के साथ। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। कल कैसा था उससे ज्यादा जरूरी है कि आज आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खूबसूरत गीत के साथ जो कि जिंदगी से पूरी तरीके से भरा हुआ है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है या ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी मुस्कुरा देते हैं? उन्हें महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती, बारिश की एक बूंद, तितली या फिर मिट्टी में खेलना, उन्हें बस इतनी सी बात खुश कर देती है। शायद हम बड़े होते होते खुश रहने की वजहें बहुत बड़ी बना लेते हैं। आज कोशिश कीजिए एक छोटी सी खुशी ढूंढने की। किसी अपने को कैसे हो पूछ लीजिए, या थोड़ा सा आराम करिए, या फिर आईने में खुद को देखकर कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर इंसान अपनी जिंदगी की किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है। इसलिए जब भी मौका मिले, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ी इज्जत दीजिए और सबसे जरूरी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार हमारी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है, है ना? ठीक इस खूबसूरत गीत की तरह जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, अगर जिंदगी में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होने लगे तो शायद हम सीखना ही बंद कर देंगे। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, इंतजार हमें धैर्य सिखाता है और असफलता हमें बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए अगर इस वक्त या समय आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, ये समय या ये वक्त भी गुजर जाएगा।